0: ꯂꯥꯏꯃꯌꯨꯝ ꯔꯥꯙꯥ ꯆꯔꯟ ꯁꯔꯃꯅ ꯈꯣꯡꯕ ꯒꯤꯇꯥꯔ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 9 ꯇꯥꯔꯦ꯫ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯁꯃꯥꯆꯥꯔ ꯄ꯭ꯔꯚꯥꯠ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯂꯣꯡꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ꯫
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना पहली जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
3: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
5: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
3: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
3: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
7: India is accelerating towards universal health coverage.
8: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
7: Pandemic preparedness and emergency responses.
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
9: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
10: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
9: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
8: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
3: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
11: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण

0: स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
1: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
3: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
4: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
0: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honour of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
6: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honour. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding, bilateral meetings, and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morus nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects India and Italy through its culinary, medicinal, and agricultural significance. This is Suparna Bhatia from Rome.
5: Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in the Norwegian capital, Oslo.
7: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो

0: इस हरे कृष्णा मांगेदर तौरी बसीदे नते मखोई पाबुंग ना सिंबीरी बसीबु इसा से मांग लगे हाइबीरी ब्रो
1: करी नोरे इसा थाज बसीबु मांग ना बसिन बरने है
0: नुपाद द नत्र बदी लेत्र ब्रो आइ दिने या बंगम जरोय को आइ बु फत्ते बि मामा ता हनबी गनु
1: नति तप ना ज्ञान तान खन सी गई दोगे हा हौजि सुम बतम लेरी मची दुना हाइब दुदा आइसु कदाइनो हाइना हाइब की वानी ने
0: ओ संग वइजनि दि ए अदुगी सु मथकता सिफाय हाइब पुलिस हाइब दने इसा थाजब हौलादि सिफम ना फम खंगदब पुंसी अदुगु पुंसीरो
1: ए सिफाय वइरगे हेक्ट छिरनि हाइब्रो हा सिफाय वइदब मिसु नंदाना मनु मतम चादन सिब यौरि सिदि
0: अदो आइदि पामजदि सुप्पा हम हे पामजदि हाइरसि मेनकागी दमकता दिने ताइबुंगो सनादुगी मसा अतोमदुगा वालोय नखरे आइसो पयारो हाइजो हौरिबसिनि कोमै पाबुंग
1: कनादा कनागा हा करम मतमदा ए फै आइसु मची एदुगा वालोय नखरे आइसु चोपै यारो ए
0: फै फैये मखै पाबुंग मतोमतगी इसानिना कुसि तौबियो पोक्तबि ममानिना आइना हाइबदि कदाइदगी ताबिरनि पंगिदको आइना मिगी मसा सिबो इसानि खन योलुबायसे
1: करी नोने हे ममा
0: ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯅꯧꯅ ꯋꯥ ꯄꯣꯛꯊꯣꯛꯂꯔꯤꯁꯤꯕꯣ ꯍꯥ ꯅꯠꯇꯤ ꯃꯦꯅꯀꯥꯁꯤꯅ ꯇꯥꯈ꯭ꯔ ꯀꯔꯤ ꯈꯟꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯃꯃꯥꯏꯒꯤꯗꯤ ꯈꯟꯕꯤꯗꯕꯅꯤ
2: ꯇꯥꯏꯗꯨꯅ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯕꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯤꯈꯩꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ? ꯙꯔꯃꯗꯤ ꯀꯥꯏꯔꯔꯣꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯪꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯏꯁꯣꯔꯅꯗꯤ ꯌꯥꯗꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯂꯦꯗꯅ?
1: ꯅꯠꯇꯦ, ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯈꯤꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ?
2: ꯑꯩ ꯄꯦꯟꯗꯦ, ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯗꯦ꯫
1: ꯂꯥꯏꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯗꯣ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯧꯅꯗꯦꯅꯦ? ꯃꯍꯥꯛꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯊꯨꯡꯗꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯣꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯖꯒꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯍꯟꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯤ ꯑꯗꯣ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ? ꯍꯥ, ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯅꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛꯇ ꯇꯝꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣ?
2: ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯅꯥꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯦꯟꯗꯅꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ?
1: ꯌꯥꯎꯗꯦ, ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ? ꯃꯃꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯒꯠꯇꯕ ꯉꯝꯗꯦ꯫ ꯅꯪꯅ ꯃꯤꯅꯀꯥꯕꯨ ꯌꯣꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯕꯨꯁꯨ ꯅꯪꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤꯕꯅꯤ꯫
2: ꯑꯣ, ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯅꯨ, ꯇꯥꯖꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ꯫
1: ꯑꯩ ꯃꯣꯏ ꯏꯆꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯆꯥꯅꯤ, ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅꯤ, ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
1: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
1: तो विमलेश जी, अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जी जी, श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
1: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी,
1: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
1: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षावन से मिलता है।
2: जी,
1: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
2: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलम्बिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
1: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
2: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
1: और आपने श्रोताओं, एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
2: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है, जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
1: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
2: जी,
1: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी,
2: जी जी जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के

0: क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है। इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
0: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
1: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
0: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
0: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जांच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello, children.
4: Hello, ma'am.
5: Hello, ma'am.
3: Hello, hello. How are you all?
4: We are fine, ma'am.
6: I am fine, ma'am. How are you, ma'am?
3: I am good. Thank you so much, Vanya. All right. So, children, today I am going to share something with you. Are you ready?
4: Yes, ma'am.
3: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes, ma'am.
7: Pets are so lovely.
3: Right, Soham.
8: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
8: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?
9: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
3: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
10: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
3: Oh, that's so exciting, isn't it?
4: Yes, ma'am.
3: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
4: Yes, ma'am.
3: Can you name some birds?
11: Sparrow.
3: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
12: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
3: Yes, peacock is a colorful bird.
13: Ma'am, parrot.
3: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
14: Any guesses?
3: Okay, I'll give you a clue. It calls... Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
4: Yes, ma'am.
15: It will be fun.
3: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. There once was a crow. He was black.
4: As you know.
3: How to be beautiful. He wanted to know. Colorful feathers. He wanted to grow. He found one peacock feather.
5: He found one peacock feather.
3: He stuck it.
5: He stuck it.
3: In his tail.
5: In his tail.
3: Then he found another.
5: Then he found another.
3: He picked up. All without fail. He stuck them. In his wings. Put one on his head. I am now beautiful. He danced and said. The other crows. Laughed at him.
7: Oh, what a fool you are. You are beautiful in black. We love you. For what you are.
3: So children, now listen to the same poem in a lovely song.
5: Okay, Mom.

0: एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी
2: दीदी
1: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
2: हाँ दीदी।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
2: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे।
1: हुँ?
2: मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
1: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
2: दीदी वो तो मैंने।
1: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
2: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है मगर

0: मगर क्या?
1: अच्छा, अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
0: हाँ दीदी, ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
1: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं। हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
0: भोजन और पानी?
1: हाँ राजू, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
0: हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
1: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
0: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मालिका का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिका का, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिका का।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
2: जी दे।
0: चलिए दादाजी।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: हाँ। अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
2: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: आहा, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
4: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
4: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: गोविंदनी पुल्लगा कलिदा बतार वो भी रबा श्री कृष्ण सहित इन महाप्रभु की शरोंदा ननायन खुरमजरी कलिदा प्रेम की गुरु वो भी रबा श्री नित्यानंद प्रभु की शरण बसु तो लबना दंदबोर
1: चंद्र जो गौर भक्त वृंद
0: श्रीधाम शांतिपुर की मनुंग हर हरि अनि की शक्ति ना अवतार हो भी रब शांतिपुर नाथ अब देते गुरुदेव की शोरून खुरम जे अया बा गौरव भक्त बिंद पुनम की शोरून भू तो लबना दंदबोध भक्ति कसरी
1: प्रभु।

0: sarebbe un lo biriba ayamba bestava mandali pune mapu nanai khuina khurumjari mo jagat mabu pruna brahma sanaton shri gauranga gi mafam da manai ramanandana prataparu dening dhobu unena bai na haje bodu tarabada nushina ramanandada kripa hapirave
1: राजा रे मिलिते जुयायो सन्यासी हुई
0: मुशिदा हे विष्णु हे रामानंदा लंबोइरग सैनासी धर्म फंगगा निंधौगो उनवाबजे असुंबो वेगदरावदो अमुक्तं कुप्थन विशार उइबियु कयुने
1: राजारो मिलोन बिक्यू दुई लोक नाश
0: लंबोई बाब धर्म शिया फंगबा सैनासी धर्म लौरब अइना होजिक पुओ निंगहु उनेदना निंगहु संगोई बाब जे हिंगिंगाइ दशु अफब वोइरे रोइ शीरे को जुने अफब अंगंग रोइ जगना
1: परलोक राहो अलौकिक
0: जगन सन हई देव करम दु लांग दु न लंबोई बैन ने निंग हम सम दरु तारब मयाम पुन मक्षिन ने नोनो बा बदु वेरनी

0: जी जय बाबा अंगांगे मधुर जरूप तो उब कांदर करानी जंग है आई बंगो श्री गौरांग महाप्रभु ना ब्रजराज ने दो निजंग ने कांद बिष्टो
1: प्रेमा बेश

0: नशी गौरांग लबोई बई ने थेमे जरी भेते ही नती ने आई बो ब्रजराज ने दोन दो मसा मक थेमे जरी को नशी दी बई तो थेमे जरी
1: आठ भूलम आमे ये हारो दर्शन
0: वो पोक्षे बगी मही आले नशी दिने युवा वादन ने आई बो ब्रजराज ने दोन दो लंबोई बने फंजेरी मही आले कोई
1: तारे कैला आलिंगुने
0: मनाई नुशी बदु कृपा हापी रगे इतना तयार मगन जब सिंह मानो नाम सोले मी अंगा उठागल मेरे गने चेत आलिंगुनु रे पामो मनी नुशी ना आलिंगुनु
1: कोई
0: कलीपति तपाऊ श्री गौर हरि आई बुंगो नहीं तो मना इन शिव कृपा हापी लगे इतना थमु हेरा बुंग पामो मत हाईधरे कौन भी रख बका आई बुंगोन कौन भी बका अंगांगो श्रीमती राधिका को भी एम की प्रेम तो हाथ मानी नहीं बैठो कलीपति पावन श्री गौरांग ने कुल भी श्रीमती राधिका कौ भी मन मबू कृष्ण कायने की बिहन लाम खांग मंगम वाखीब नहाक तु चुंग नहाम दिहे थक थक निप तब मतु की मतौ मद राजकुमार प्रेम पावन
1: कृष्ण कृष्ण को

0: शरीर वाला कृपा भंग कान दुदा पामो मान थकले सिमान ते यम के नाम सोहित्रे सोन बगी पेना इद्रे बा हा कृष्णा प्राण कृष्णा आद तो इन
1: सारो भाग्य देखे इस लग घर कार्य भक्त गुबने
0: मनाए द कृपा हाप आई वोन कृपा हाप दो भक्त पुनः मुझे कोई कुशल गई ये मिने अंगा अंगा अंगा उबुगे मतोगुम कृष्ण कृष्णा में नाम स्वरूप का भक्त पुनः मन कर रिहाय लैबुक फैते को हे राजकुमार जगन बबू श्री गौरांग ने कृपा ले लाइन हापी दे को इतना धैन नी लो इन प्रशंसा हो
1: तुम्हें महा प्रभु तारे धज्ज कराय
0: मनाई दे तो कृपा हाप लोरे को आंदे मनाई थेम दिन बीरे गए ना बालोक तो ये गेरे गने नुशी ने थेम दे बीरे ने श्री गौर हनी बुन
1: या आस अमर मिल हम ये अज्ञात इल्ला
0: जगत पुने मोने पिए दे बगे मशे गोरे बहे राजकुमार लंबोई बैग नीति ने मिखुनी उन्नशी को लंबोई बैग ने नाम स्वामी नशी को नीति लिंग वीरों को हे राजकुमार हे
1: बिशाल।

0: 阿阿弥陀佛的心吧，麦多不能麦多呢。南无的微不我多，你听你们昆尼尼啊，比卡个罗尼的人，你们多能干些哩啊？
1: 多好多好，比强阿格里罗亚麦多恩哦。
0: 来啦，麦多不能麦多个，你听你们昆尼尼罗尼的这个呢，比卡个个有黑脸皮的，有心里个黑脸。
1: 麦多那那让个。你个特给龙，
0: 谁哪个没得问能觉得吧？谁个让个不他外的看觉得吧？佛的心都个，一干的干的，一他也他那的吧？你第一年没看那个心都都，那俺说那个你的心都。
1: 这个那天的，热的热的，你不睡啊？一龙。
0: 这个开头的阿里吧，哎，不过这个那天的不给，热的热的，没得多，还有些那个你的那干多。
1: 不是没。प्रभु काशी मिश्रों वानिया
0: अगर कोई जाए मुंह युवा खंजिया काशी मिश्रे सिंबा अयांबा परिशा पंडापु ने मक्तोलो इन्हें उन्हें जरिये दो
1: परिशंग पात्र सर्वभूम अनिल धाकिया आंग
0: उन्हें की पापी भी है बा क्षेत्र के सर्वभूम भरता साजनी दो पुन्ने नहीं बुंगो ने भक्ति कली है हम दूधा
1: जनारो पाशी प्रभु हाचियां को हीलो
0: तयान मुगम जब शिमानी दा मनाई वो बेशिंग दुदने कृपा गलो ने दुदने बिखा आप तंग निरक पुब वाई बुगो ना

0: ဆက်နိုင်ရပစင်ကြီးဝါဒီတတာပြီတဲ့ sister nivedita ကြီးပွန်ချီဝါဒီအာကာသပနိဖာလ်ဟောက်ဂျင်းလုံးတယ်လီဖုန်းငနိမိနစ်တရာမငါဆက်လီဒယ်လီဒကီရီလေဒာဒေါ်ပဟဲဆမဇာဖန်ဘီရကနိ
1: से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MV3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार

0: विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मुलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास डीआरडीओ की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूएलपीजीएम V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
3: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
4: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
5: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULBGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज पर प्रसारित। फौज भाइयों के मनोरंजन पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है।

आज फौज भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत का ये पहला गीत का नजराना सुनिएगा मिशन कश्मीर फिल्म से। समीर की रचना पर ये गीत है और संगीत से सजाया शंकर एहसान लॉय ने। गीत के गायक उदित नारायण और अलका याग्निक।

हाँ दोस्तों, चुपके से सुन। अगर कुछ पा भी लिया तो इसी पल में है, और अगर कुछ सुन भी लिया तो इसी पल में है। सब कुछ एक ही पल का वो खेल है। अगला गीत है दोस्त करीब फिल्म से, और गीत के गायक हैं कुमार सानू और संजीवनी, रचनाकार राहत इंदौरी, संगीतकार अनु मलिक। दोस्तों, इस गीत में नजर आए थे बॉबी डियोल के साथ एक अभिनेत्री जो बहुत सी कम फिल्मों में दिखी थी, और उस अभिनेत्री का नाम है नेहा। ये उस दौर का गीत है जब बहुत से कम फिल्में रिलीज हुआ करती थी, और कुछ फिल्मों में से इस गीत को सब ने बहुत पसंद किया था। इस गीत को सुनिए जो दो दिल को करीब लाता है करीब फिल्म से।

चोरी में भी वो मज़ा। और ये मज़ा इस गीत का है कि हम रातों को कैसे, जो सितारों से भरे होते हैं, सपनों से भरे होते हैं, उन छोटी छोटी रातों के बारे में वो बातें करते हैं, तो उस पल को याद करते हैं और सुनते हैं तुम बिन फिल्म से। सोनू निगम के साथ गायिका अनुराधा पौडवाल की दिलकश आवाज़ में ये गीत, फैज़ अनवर के लेखन और निखिल विनय के संगीत।

ये प्रसारण है आकाशवाणी इम्फाल के कंगला चैनल द्वारा और आप सुन रहे फौजी भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में फिल्म संगीत। दोस्तों, जहां प्यार से सब कुछ शुरू होती है तो प्यार पर ही सब कुछ खत्म, और जहां सरहद खत्म होती है तो वहां इनके लिए प्यार शुरू हो जाती है। ये वीर और ज़ारा की कहानी है दोस्तों, और वीर ज़ारा फिल्म से ये गीत है उदित नारायण की आवाज़ में, जिसके गीत के लेखक हैं जावेद अख्तर और संगीत निर्माता रहे हैं मदन मोहन, और पुनः निर्माण किया संजीव कोहली ने।

साया, ये फिल्म है और इस फिल्म से हम आपको सुनाने जा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में ये दो गीत, जिसके लेखक हैं आनंद बख्शी और उनके साथ हैं संगीतकार एमएम क्रीम। और दोस्तों, इस गीत में नज़र आए थे जॉन इब्राहिम के साथ वो चमकती हुई सितारा, वो अभिनेत्री जिनका नाम है तारा शर्मा।

0: nukanbiya as a public khatuga thai thangti no pambo ti nukanbiya dom right violate tu nukanbi bo timak be if you are in agri person tia nang dlanga rona dom right violate tu no dang agrips tu nukanbiya pai bing atya anina anidi contact tu jai luga I am ready to help you dom right khat violate tu nukanbi right tu no om right haya tia ani common sense tia mi khana tia ओमो खना हय लांदो मे ति बगा हगा लोन ले जामंग पय ते न तोम राइट खत नो एग्री पर्सन तु नो कान बी ते आनी खोती कांटेक्ट तु जाय ते ओपिना ते आई टी के हेल्प तु थंगने ओल स्टेप आई एम रेडी
1: बथांग दुगा जाना तुन तुन लिटिगेशन छु का ओनो बी अनिना थाई जानो क्रिमिनल खतले सिविल लिटिगेशन ओम पाम्बो दिनो रिथंगो
0: क्रिमिनल एंड सिविल लिटिगेशन दिनो हया क्रिमिनल क्रिमिनल उमतिगा आइतिगारी कुमा थंगदे सिविल रिमांग ब्लै एस ए लिटिगेन खतुगा क्रिमिनल मैटर्स हया क्रिमिनल तिबा क्रिमिनल मींस ए पर्सन हु कमिट क्राइम और गिल्टी यू नो ऑफ एन ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड पनिशेबल बाय स्टेट और एनी एप्रोप्रिएट फोरम क्रिमिनल खतुनु क्रिमिनल तिबा त्या अनि लॉ खत मतलब ए क्राइम खतुनु क्राइम खतुनु कान दिया हाब क्राइम तुनु दिंगा पनिश तुनु तिनता नु लोनु सुइ का पनिश तुनु पाइ ने क्रिमिनल ति का थेकले ते अपना क्रिमिनल बि पाम पाम सिंग बो तिनु कान बि ते आइना रिंदम दंगा मदर दनु मदर केस मिथ मि तु नु थेप्स बुरुसाब खाब नु चीटिंग रेप्स असोल डिक्वेटी किडनैपिंग एंड डीपीएस पोक्सो पाइबिंग अ ते क्रिमिनल पाइबिंग अ ने क्रिमिनल मैटर ति का डील्स टू नु लोगा सिविल मैटर बिना पाम पाम दिल सु वो सिविल सुट ना व्हाट इज सिविल सुट तिनु काम बिया सिविल सुट टू ऑल लीगल एक्शन ब्रॉट बिफोर ए सिविल कोर्ट बाय एग्री पर्सन अगेंस्ट अनदर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट ओम राइट खत हया वायलेट तुनु काम बि ना एग्री पर्सन तुनु काम बि हया ते सिविल कॉपी हो लोगो ओम राइट राइटफुल गा क्लेम टू नो सिविल सिविल मैटर है ना सिविल मैटर बिने पाम पाम तु जाबो तिनो काम बि त्याने लेन डिस्प्यूट खसो नु काम बि सिविल मैटर बि तिगा केस है दिल तुलंगे पार्टीशन सूट मतलब मनी रिकवरी डिक्लेरेटरी सूट इंजंक्शन सूट इविक्शन सूट कॉन्ट्रैक्ट सूट सक्सेशन केस पाइबिंग हया सिविल मैटर बि तिगा दिल सुलंगे
1: ओजाना कोम रिसिग्नी सुनिब्ली तोबी Manipur State Legal Service Authority, Manipur State Best Lawyer, Panel Lawyer Award Pangdame. Hai ba Pangdam no mayri kasem le right mo.
0: I tigarin thangde. Each and every district of Manipur under the aegis of Manipur State Legal Service Authority, Masal Sam Thoibi, have selected panel lawyers and remand lawyers. Those advocates are free legal service. To the people. So despise, I am also one of the remand lawyer of Tamil Nadu. Fortunately, I got selected the best penal lawyer of Manipur for the year 2024. So on the auspicious occasion, commendation ceremony of Manipur State Legal Service Authority bi diga ai diga phangnoi. Haya pambu tinu kambia masal sa tinu haya manipur state legal service authority na haya function tu ba pam thoi bibo tinu ka bi nal sa ti khangai national legal service authority of india ti nu hai ba thoi bia masal sa haya amnoi hai ba thoi bia scheme chuang kha ti ga me scheme chuang kha me hai thoi bia under section 12 of legal service authority act 1987 thoi bia who can get the free legal services legal service haya tu tu na lawzabo tinukan bia legal service law lawnum lang bia ti satiga ngari mai tu thangmang de legal service haya songlang nanga crime khat ko mi turunu or dom right a violate turunu or if you are in agri person tu nukan bi haya nang haya dom right pak rightful ba nang claim tu no amnu ti da nang lawyers engage lang sian ma tinukan bi ya manipur state legal service authority thoi bi free legal service bi tinu pa tu bu de lang advocate free pilu ne dom case ya trial tu lang anu advocate free without any course bi free pilu ne lo ga dom case si ta thang no ne no na approach su jai lo ga hai ba scheme ha ya tu entitled to bo tinukan bi ya kama sharing title to re women sinu binga no no sanruan children's

ते लही न्यू पाओ जाखोए माशो ही कम्युनिटीज आ हाय को ही सिचुएशन हाइजनी शिपुरे तिलोज कुकी इन पी मणिपुर अल्या कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी पीपल लाइट अपाओए अखाइसो न्यू क्यूको मिल कुकी मिलिटेंट्स मैन्यू हाँ बिजू बिही सिविलियंस मैन्यू जोवुया तालोरेदो न्यू कंसर्न ऑथोरिटीज ने वासो पुयो जाखोए वुमेन लीडर्स मै तो न्यू कंसर्न ऑथोरिटीज ही पे तो वे खोजू डिमांड्स टॉस सो पुई मोरे टिलोज एजुटेशन हाई जो न्यू शिपी लाइट आ पाओ वुमेन मै तो न्यू प्रोटेस्ट जो तिले ही रोंगमई नागा काउंसिल मणिपुर RNCM President KC Savio, Joint Tribes Council, JTC General Secretary, RNCM Tamenglong Zone President Ariang Panmai Alia, Kyuko CSO's leaders may tonyo protesting vejo po itapawe. Jo weko ay hanya akay sa jo salay, masyohin, jo titihin, may sunod sa palo, do pa po kay tiju to. Rabo jo titihin sa donyo. दोपखै दिजु लोटो हाय शोशो केजुलै ररा कैसोनु हमकिनि बिजुङ पानङ नरुनि वाइ पाउने मेहिनि सोजु नि क्युशोलो राव दिजु पिरापो ताखोए आ हाय जेसनु वखोहि बिजु विननि एम जेचनि आला पिनि सोजु ओ चर्च दिपिरापो ताखोए आ सजेसनु हमकि बिजु थेरनि पोशो जेकब अल्या पी वी मीन सुजु निवी खुको तिजु पी रापो टाको ए मशो ही दिल्ली ही नि बिजु रोवी ने न्यू थंगम लास्ट ईयर अल्या पी वी मीन सुजु क्यू पशु मपो तिजु पी रापो टाको ए अखाई सुनु वे माई की नि बिजु प्रेस लानी रेबिका की नामाई नि सुजु लो रामाई विलिशी तिजु पी रापो टाको ए लोहा तो हाई शोशो नि कैजो को लखे

आकाशवाणी इम्फाल से मलिंग बुतुआ बुजांग चुई तिंगसा नई तिंगजिन खोपू हो तम बबा में कबुई में तालम तम बबा में मेडियम वेव मीटर फाइथों रिदय पॉइंट खचरु किलो हर्स फाइट चार एक चट कनाई बु खनी एफ एम मेगा हर्स फाइक कथों पॉइंट पुंगु थौरे मको नाई बम थे से जांग ने कतुंग चाम आकाशवाणी इम्फाल लालो दिखो से जांग ने कतुंग चाम चाम तम बबा में अगुआंग थाई मै All India Organization of Chemists and Druggists AIOCD tongbang kha sai kandi kapum ma khaw strike ta kai ba me puriang goi online khaw kaman kai na tila taw lo me re drug distributor khani pharmacy goi khaw ka daw sa ma mai renra me ariu ba me jang re nu mu mai suna strike hai ta kai bam pitonge Manipur kho ni mi ko hai ma chuang law na Indian Pharmacist Association Manipur State Branch Tung General Secretary Pau Sapam Sarat Chandra Singh Risakane Online Ka Pharmacy Tung Guideline Khori Tuanna Puriang Goy Kaman Kai Na Tila Taulo Na Dukan Kalao Kalao Na Dung Na Bamay Pharmacy Goy Khao Dai Na Kham Me Tibam The Sarkar Risabam Me Ladbam Ko Hai Katop Me Lung Khao Zao Gut Lao Na May Goy Khang Kadao Chanuk Me Tanduan Goy Sin Thao Lao Khang Pau Sarat Chandra Rui Apil Su Ka The Manipur AIDS Control Society Risamrang na Imphal East tong Doctor Khani Janims tong Medical Doctors Gwai khaw HIV khori Zariak Thai na Khani Akup na Rajao Nicho Samilam khaw Jat tong Sumai Technical tong Guidelines Gwai Kapiat Min na Kapiat Khang Khang Rui Tuna Seminar Akhadola nung Janims tong Auditorium khaw Lang Pakanthe TB Mukta Bharat Abhiyan tong Kadam Akhatsuna sa Imphal tong Ways tong Kurkul Primary Health Center Rit Kwanba mai AAM Lamdeng khaba mai Ayushman Arogya Sabirda TB Rapwat Lam khaw mai gwai khaw bu na ti thai lo khang rei kamung akhat lang pakan the Samurao khani lilong chajing khoni TB Mukta Bharat Abhiyan to kadam akhat suna mai singan rek sanai na charok khaw TB Rapwat tong training lang pakan the kamung hai Imphal West

0: आकाशवाणी इम्फाल इच चक्रो हुंदा पमो हे फेमा के कोरे माओ जसुबु सुसुदाय इजो असुथे क्वेश्चन हि ए चिसा हे मुनो ओफो पेलो जो चोम फ्रॉम चोले रे ओ जको माओ लालिनो अनोलेशे जको मशले काइनन प्रॉब्लम को समय उमोइनो तो क्रेगलो नगामय चुरो हि फ्राबियो दो सेनापति डिस्ट्रिक्ट वुमेन एसोसिएशन तानो चितिसाओ सेनापति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स नो मैं मोसोनो अस मनिए ओफ मै क्रे क्रे नो अस चुले हि उजे जो बे अस चुले नो ओफ मै मोसोनो सरकार यु नो गथो गला तो के गलो मै हि फलो गुरु दुनो पिक ऑफ ऑफ योर खो वी वान जस्टिस ए जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड तो शमनिए अस चुले नो मेमोरेंडम गली चीफ मिनिस्टर बलखे सेनापति डेप्युटी कमिश्नर खुलनो प्योरिया लियांगमाई नागा काउंसिल ए लियांगमाई नागा वुमेन यूनियन जी डेलीगेशन उमुगलिनो इदु मिक्रेनो चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचन इगदेओ पास्टर गलिपुनलो तोक्रेगुलो नागामै चोरो खुइही कोसामै बालनो फलोगुदुनो फिकोही फोबियोरो पेमसमनिपिया हिलिनो चीफ मिनिस्टर खेमचन नो मणिपुर पुलिस ए सीआरपीएफ पर्सनल खुनो होदु चोरो खुइही फोप्रालो गुरुदुनो कॉम्बिंग ऑपरेशन ताही सोवेरोपे स्टेट ले कुबु उमोजा थफेनो माखेवो ताही समो स्टेट ले अमानी फवलो गुरुदुनो सरकारी बाबु पियो तो खमनिपिया मोसोइनो मोसोइदुनो तो सरकार ए नो स्कीम सोथुका पिख्रुही कागु दोले कुबु महे पे मोसु पिलो गुरुदुनो जान बागीदारी सबसे दूर सबसे पहले कैंपिंग नाही मणिपुर जी कंपोपी डिस्ट्रिक्ट लिहा सोथुलोदे कैंपिंग नाही लुंगटिंग ए आइलैंड सब डिविजन लेनो सासोवे जिरीबम फरजोल ए चोरचंपुर डिस्ट्रिक्ट लिहा डिस्ट्रिक्ट कोफो फुमेनो सासोवे डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग बाजपाई नो पेजोसा मणिपुर सरकार नो स्टेट लेनो निशु फोकबु टेक्सटाइल ए हैंडलूम उन्नाख्रुही वकोपे मतलो गुरुदुनो चितुवे रो मणिपुर स्टेट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान नही दु मिक्रेनो कुबुले न पेवा मणिपुर लेनो कानी हैंडलूम ए टेक्सटाइल उन्ना दही क्वालिटी बुओ ए बुए ए जिफेले कुबु उन्ना खुइहा कवालो से रोपेओ हैंडलूम सेक्टर दही नो स्टेज इकोनॉमी चिनीपे फको कपी गोलिमो नितोमई ए ओसुमई हा फको पिलोवेरो सेक्रेटरी फोनानो देमनिपिया मेघालया चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा नईदु गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तुरा चेरांग्रेहे एनसीसी बटालियन 41 कॉम्प्लेक्स जी ऑफिस कॉम्प्लेक्स कुथु नही हुथपियोटे नालुमे इपानो खुसिलरो काई ए उजी काई उद्दलिनो बुलो गुरुदुनो नेशनल कैडेट कॉर्प्स नो मत्सिही सपिवेतो मफुना संगमा नो पेमनिपिए इदुनो मेघालया स्टेट लिया कोरमिज उमुहि पुखुचोनिया वेस्ट एशिया नुसोलिनो कोहे प्रगोलोवनो जिफेजी क्रूड ऑयल उमुहि पुखुचोवनो मिज उमुहि कुपुनिवे पेट्रोल नो पिशा रेनिया पदेउ ए डीजल नो पिशा रेनिया चकुनो पुखुचोहि निए ए हिथि पेट्रोल लिटर गलिपिले कसा रकुआ चकुआ पॉइंट रेचरो कुसु ए डीजल नो कसा रेकु पॉइंट रेकुआ पद्देव खुरिया वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी तनो तुरा हेक बु डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल हेनो नालसा जागृति स्कीम अवेयरनेस नही साव बुबिया आईपीएस ऑफिसर साहित्या पावना साय कासी रांजू डीएलएसए सेक्रेटरी आईआर मराक ए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जी ऑफिशियल मेनो चसोवलिनो पॉक्सो एक वनो पेमस मनीपिया कोथुसो सोथुगुलो इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर आईसीटीसी सेंटर काली इदु त्रिपुरा जी गौमाती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उदयपुर हेनो फोथोलो दिया सेंटर लेनो एचआईवी टेस्टिंग काउंसलिंग ए ट्रीटमेंट जी ओके जो कुही पिचो सोला त्रिपुरा एड्स कंट्रोल सोसाइटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर बिनीता चकमा नोपेजा ओके जो नही सोमो रूरल इन्यूलिया लिंग एआरटी सेंटर तो कारबुक सब डिविजनल हॉस्पिटल ए अमरपुर लिया फोथोले तो पेवे नागालैंड जी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तनो মিশন ভাতসালিয়া ভানো নাগাল্যান্ড স্টেট কনসালটেটিভ মিট কালি জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট ঠুকাহা চপঙ্গ জুভেনাইল জাস্টিস মডেল রুলস ঠুকাহা মাকা চরৌ এ এডপশন রেগুলেশনস ঠুকাহা মাকা হা ভানো ইদু কহিমা হেন বুলোয়া ডিপার্টমেন্ট অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এ মিশন ডাইরেক্টর লিমা ওয়াবং জামিয়ে নোপেলস অনামই চিকু ইলেকাপি পুনল নাগাল্যান্ড জি কাস্টমারি লস এ উজে দো নাহিয়া খেমলি শেয়ার পেমনি পেয়ে মিনিস্ট্রি অফ ওমেন এন্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট জুনাইট আল ইসলাম নো পেজস অবো মাছে কুমো থু শিয়াপঙ্গ গ্রহি ও নামান কসোতাহি কুবু দুসনো রেও কনসালটেশন এ উচি সুখু দামলি শেয়ার পেমনি পেয়ে ডাইরেক্টর ফোনা কশিলি জিমনি নো নাগাল্যান্ড স্টেট লে মরগুটু নামাই এ নামাই তুল্লাফো অবো কাশি সোগাপি নাহি নুরগুরুদু নো ইনস্টিটিউশন খুনো বাবপি মলেশিয়া রপেমনি পিয়া অরুণাচল প্রদেশ গভর্নর কে টি পারনাইক নো স্টেজি সোশিও ইকোনমিক নাহি সমাজি থপুলগুরুদু নো মাইক্রো স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস এম এস এম ইস পিলে উল্লেখনো নাহি পিপু মলেশিয়া তো ইশান ইন্টারন্যাশনাল এম ডি এ সিইও শান্তানু শ্রীবাস্তাবা ইয়কুয়া নিউ দিল্লি হেন কফ্রচল ন পেমনি পেয়ে অরুণাচল স্টেট ন মজা বাসে পাইন নিশু ফক বুথিফ ট্রাইবেল ক্রাফ্ট অর্গেনিক ফার্মিং ফরেস্ট প্রডিউস টুরিস্ট ওকে জলিন ইয় জুথল সে হিদুন স্টেট জি চিনি ফি পিলে জলি এম এস এম ইস নাহিন মৎসু সপিলে পেমনি পেয়ে স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিজন এস আই আর ইলেকটোরেল রোল নাহি মিজোরাম স্টেটলে সুথুলোদে চিফ ইলেকটোরেল অফিসার লাল রো জামা নো হিভানো অফিসার স্ক্রিন আলিক রো আচিচুল নো অবহি সপিও দখোয়া ইজো কহি হিসে
1: সচলে হে কেনো সৌরি লুরকি এসচু সচু তালা সো অফে বিথ

0: ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ
1: ꯇꯣꯝꯕ ꯅꯪꯒꯤ 50% ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟꯠ ꯄꯤꯕ ꯔꯦꯁꯇꯣ ꯄꯣꯀꯤꯃꯣꯟ ꯄꯥꯛꯇꯣ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ
2: ꯂꯣꯏꯗꯤ ꯂꯣꯏꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯦꯅꯅꯦ 50% ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ 50% ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ 50-60%ꯅꯤ ꯑꯣꯐꯔ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯇꯣꯛꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟꯠ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤ
1: ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ
2: ꯍꯥꯏꯕꯗꯤꯅꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯆꯅꯤꯡꯕ ꯂꯨꯍꯣꯡꯒꯗꯕꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯊꯥ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟꯠ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯐꯪꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ
1: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯅꯦꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯔꯦꯁꯇꯣ ꯄꯣꯀꯤꯃꯣꯟ ꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯨꯔꯒꯦ
2: ꯍꯣꯏꯁꯦ ꯔꯦꯁꯇꯣ ꯄꯣꯐ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯦ ꯍꯤꯞꯄꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯝꯐꯣꯔꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯝꯄꯥꯛꯅꯤ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯣꯝꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯧꯕꯤꯍꯧ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯁꯤ ꯄꯦꯅꯥ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ
3: ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯇꯥꯛꯌꯦꯜ ꯄꯥꯠ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯁꯦꯁꯟ 2026-27ꯀꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ, ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ, ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ, ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡꯗ ꯕꯤ.ꯇꯦꯛ ꯀꯣꯔꯁ ꯇꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯖꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯍꯧꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯐꯣꯔꯝ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯦ ꯐꯣꯔꯝ ꯂꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝ ꯖꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯅ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 25 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯍꯧꯗꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯅ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 1 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ www.mtuadmission.in ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ 9362204552ꯗꯒꯤ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ MBA ꯀꯣꯔꯁ ꯇꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯉꯥꯏꯕꯤꯌꯨ
4: ꯂꯧꯃꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯁꯤꯠꯁ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤꯗ ꯐꯧꯗꯤ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ 4005 ꯊꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯆꯥꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯂꯧꯃꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ 4005 ꯅꯨꯃꯤꯠ 120ꯗꯒꯤꯅ 95 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯆꯥ 50ꯗꯒꯤꯅ 90 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯣꯛꯏ ꯕ꯭ꯂꯥꯁ BLB ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯨꯜ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯇꯥꯒꯟꯗꯦ ꯃꯔꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯅ ꯁꯥꯠꯂꯤ ꯐꯧ ꯆꯔꯣꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯡꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯆꯥꯊꯣꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯠꯂꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯂꯩ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ 4005 ꯐꯪꯐꯝ ꯍꯩꯁꯄꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯑꯅꯛꯄ ꯇꯤꯂꯥꯗꯤꯗꯥꯛ ꯌꯣꯟꯐꯝꯁꯤꯡ
5: ꯌꯥꯏꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯈꯣꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯥꯏ ꯂꯥꯛ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯊꯥꯒꯤ ꯐꯤꯁ ꯍꯨꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯀꯦꯕꯤꯟ ꯀ꯭ꯔꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯆꯍꯤ 15 ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯂꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯂꯥꯏꯖꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝꯁꯨ ꯄꯤꯖꯒꯅꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯟ ꯀ꯭ꯔꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ 100 ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ 8582973800 ꯗ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ
6: Hello Khunggang live phone in program
7: Hello Khunggang live phone in program Tha khuding ge aroiba thangja Khunggang ge thoram da sandok chaba
6: Hello Khunggang live phone in program Chatliba tha sigi oina lakliba megi tang kuntra thangje numit numidang pung taruk minit nifu Khunggang ge thoram da sandok chagani Hello Khunggang live phone in program Thamjari behiram ayok nga gi section thorang expert oina lengsin bigadaba Dr. Saubam Khogen Singh Senior Scientist and Head KVK Ukhrul ICAR Research Complex NEIS Region
7: Miyamna Studio ge telephone number
6: 9362327078 call tawbiraktuna thoram asibu saruk yabiu Hello Khunggang
7: Live phone in program
0: Adomna thoram tawiribasi Akasbani Imphal degini ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 10 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯗꯤ SMS ꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 7 ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯅꯥꯆꯣꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯁꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯦꯁ꯭ꯋꯔ ꯁꯔꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯂꯟꯗꯟ ꯕꯂꯥꯗꯦꯕꯤꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9:30 ꯃꯈꯥꯏ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯩ ꯏꯃꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 7:30 ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ
8: आकाशवाणी इम्फाल माइबम दिजमनी पाउ पाजरी अहमद मरोइब पाउ मुख्यमंत्री युमनाम खेमसान हैरी सरकार की पांदमदी आयन की वांगद पाइरिब खुजु खुलाइसिंग लोकतपनी नगा फुरुप की मियोई तरुक फाजिंखिब अदु अथुब मतमद थादोरगनब तोंगान तोंगानब मफमसिंगद पाकसन वागत खोंगसंग संसिंख्रे मणिपुर की पेट्रोल पंपसिंगद थाउ पिबिगी अकंगनब सन्न कांगलोन सन्नब हौरे थाउ की अवाटप लेती हाइन मणिपुर पेट्रोलियम डीलर्स फ्रेटर्निटी की माइकैदिगि फोंदोरगली केन्द्र की सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय की मखाद लेबाक अब पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज की आगामी लेम एक्सीडेंट इंसोरेंस पॉलिसी यौनगदौरी केन्द्र की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैरी नीट यूजी की अमुक हन हये पांथोकदौरीब परीक्षा से करीगुंब फिवम असोय अंगाम थोंदनब होनगनी मुख्यमंत्री युमनाम खेमसान हैरी सरकार की पांदमदी मणिपुर दा आयन की वामद पाइरिब खुजु खुलाइसिंग लोकतपनी वाफम असे महाकी सेक्रेटरीयेट ngasi एमएलए रामुइबा तांखुल नगा खुंजा सिंग मसुंग सिना कैथेल की विलेज सिप सिंग उनदुना लमदम असे दा शांति पुरकनब मसुंग साखो थौरांग की वाफम कया खनबदा मुख्यमंत्री ने फोंदोखिबनी मुख्यमंत्री की सेक्रेटरीयेट ngasi उनखिबदुदा सिना कैथेल की विलेज सिप सिंगना सिना कैथेल पुलिस स्टेशन दा एहेनब पर्सनल सिंग हापसिनदुना शक्ति हेंकलनब लोइनना सिना कैथेल की एसडीसी ऑफिस मथौ फजन तहुनब की वाफम पुखतखि सिना कैथेल दा हंदक खुलाई पाइब सिंग ने अटैक सथरकब दा खुंजा सिंग दा तंगदु लेताब फिबम अमदी अकी तुजुंग कया थोकलीबदुगी येंगलगा मफम मदुदा मतिक साब सिक्योरिटी थंबिलब सरकार ने होनबी हाइन तक्सिंखि मसी की मथक इम्फाल उख्रुल लंबी की महादेवदगी सिना कैथेल खुंगंग फौबद लेरिब लंबी असिदा मतिक साब सिक्योरिटी थंबिदुना मियाम की सथोक जसिन दा अपन बथोन बिगनु हाइनसु मुख्यमंत्री दा सिना कैथेल विलेज अथोरिटी ने तक्सिली उनबदुद मुख्यमंत्री नाई राइज असिद लेरिब मियाम की लुसिंब सिंगना नहा सिंगदा हिंसा की थाबक थादोक्तुना शांति की लंबी दा चंगसिनब पौताक पीबेगी तंगाई फदब लै लोइनना मुख्यमंत्री ना लमदम सिगी नहा सिंगबो तोंगान तोंगान ब मखल की स्किल ट्रेनिंग पीदुना मसाला मसाबो थाबक फंगनब सरकार ना होनरी हाइन फोंदोखि नगा फुरुप की मियोई तरुक फाजिनखिब अदु अथुब मतमद थादोरकनब दाबी तौदुना नगा की तोंगान तोंगान ब लुप सिंगना तोंगान तोंगान ब मफम सिंगद वाकत खोंजों चंगसिनख्रे तमेंगलोंग जेमी लियांगमई रोंगमई इनपुई की अपुनब ट्राइब्स वुमेन एसोसिएशन मकोई की दाबी तक्सिनदुना तमेंगलोंग हेडक्वार्टर्स जादोनंग पाक वाकत खोंगजंग संगसिनखि मकोई की दाबी सिंगे मलुंग था असिगी तरहुमदोई लैलोन वाईफाई कुकी सिंग फाजिनखिब नगा की मियोई तरुक अथुब मतमद थादोरकदबनी मसिदा चेनब सिंग अथुब मतमद फादुना आयन की ओइब सैराक पीगदबनी हाइब वाफम कया याउरी नोने जिला दसु जिला असिगी लोंगमाई बाजार दा फाजिनखिब मियोई तरुक थादोरकनब वाकत खोंगजंग संगसिनखि जिला अदुगी तोंगान तोंगानब मफमसिंगदिगी लाकब नुपी कया मरुमना मिसम मियाम की मायोकद हिंसा की थाबक जथगनु हाइब प्ले कार्ड कया मरुम पाइदुना खोंगजंग संगसिनखि मरा लेब सिंग अथुब मतमद फाकतुना आयन की ओइब चैराक पीनब तक्सिली खोंगजंग अदुद सरु याखिबी नुपी अमना मखोई की दाबी तक्सिल अदुना असुमन फोंदोगली
9: मसी अथुब मतमद पुथोक पियो हाइबसे हाइजनिंगी अनक अनकबदसु आर्मी कैंप चाउन लेबनी अदुगुंबसु तौब याबनी नुमित यामनी चखरे अदगे ngasi फाउसि कुलो अमद फंग अतेक अका याउददना अथुबदा थिजिन बिरे हायरगा मतेंग पांग बिरे हायरगा अखोयगी खुत्ता सिना बियो हाइबसे गोमेनदा अखोयगी रोंगमाई वुमेन गी ट्रपतगी हाइजनिंग
8: फाजिनखिब नगा की मियोई तरुक तेक्त कायदन थादोरकनब दाबी तक्सिनदुना उख्रुल कामजों नुपी सिंग वाकत खोंगजंग संगसिनख्रे नगा वुमेन यूनियन मणिपुर सिंधुन चंगसिनखिब वाकत मिफम फाजिनखिब मियोई सिंग अथुब मतमद थादोरकदबनी मरा लेब सिंग मतिक साब सैराक तीगदबनी हैरी नोने जिला की कबुई खुलेन न्यू कबुई खुलेन मसिगी अकोइबद लेरिब यामलब नुपी सिंगना नगा की मियोई तरुक अदु थादोरकदबनी हाइब दाबी तक्सिनदुना वाकत खोंगजंग संगसिनखि खोंगजंग संगसिनखिब सिंगना मिसम मियाम दा हिंसा की थाबक चथगनु मिसम फाबगी थौंग अदु मियोइब जातिगी मायोक चथब खोंगथांगनी अरानब तौब सिंग अथुब मतमद फाकतुना सैराक पीगदबनी हाइब दाबी कया तक्सिनखि ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯆꯦꯀꯣꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗꯁꯨ ꯅꯒꯥ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯠꯊꯈꯤ꯫ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯁꯇ ꯅꯒꯥ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯠꯊꯈꯤ꯫ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯎ, ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯇꯧ, ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯖꯤꯂꯥꯗꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯑꯥꯏꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯏ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯜ ꯂꯦꯞꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯛꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯦꯃꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯤꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯃꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯂꯥꯈ 12,00,000 ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯦꯃꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯤꯁꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯥꯕꯤꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯕꯤꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯡꯗ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯦꯃꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯤꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛꯀꯤ ꯃꯃꯜꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯕ ꯆꯥꯡꯗ ꯂꯦꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯄꯤꯛ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯀꯦꯃꯤꯁꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯊꯠꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ
10: ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯣꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 10, 19 ꯑꯃꯁꯨꯡ 20 ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯂꯣꯛ ꯑꯗꯥꯂꯠ ꯁꯃꯥꯙꯥꯟ ꯁꯃꯥꯔꯣ 2026 ꯁꯤꯟꯖꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯛ ꯑꯗꯥꯂꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 20 ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯦꯗꯤꯌꯥ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯝꯐꯦꯜꯄꯥꯠꯇ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯂꯣꯛ ꯑꯗꯥꯂꯠ ꯁꯤꯟꯖꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯛ ꯑꯗꯥꯂꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯨꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ, ꯁꯦꯜ ꯇꯤꯡꯗꯕ, ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ, ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯂꯣꯛ ꯑꯗꯥꯂꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯌꯥꯎꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣꯝ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯌꯥꯎꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯕꯤꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ꯫
8: ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯥꯎ ꯐꯪꯅꯗꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯣꯛꯂꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯌꯝ ꯗꯤꯂꯔꯁ ꯐ꯭ꯔꯦꯇꯔꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯇꯔꯅꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯤꯅꯔ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯖꯣꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯟꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯁꯦꯝꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯌꯝ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯀꯛꯊꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯜ ꯄꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯂꯛꯇꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯍꯧꯔꯔꯣꯏ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯊꯥꯎ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯖꯜ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯜ ꯄꯝ ꯑꯃꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯄꯤꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯄꯤꯔꯛꯄꯅ ꯑꯣꯏꯜ ꯄꯝꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯎ ꯂꯣꯏꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅ ꯑꯣꯏꯜ ꯄꯝꯁꯤꯡ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯟꯅꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯜ ꯄꯝꯁꯤꯡꯅ ꯅꯥꯔꯣꯟꯗ ꯊꯥꯎ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯖꯣꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯍꯥꯏ
11: ꯄꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯣꯄꯟ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ, ꯃꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯣꯜꯂꯨꯕ ꯈꯣꯠꯂꯨꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯟ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯗꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯄꯤꯗ ꯌꯥꯗꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯦ, ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ, ꯗꯤꯄꯣꯗꯗꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯊꯥꯎꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯄꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯕꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯗ ꯁꯦꯜꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯅꯣꯡꯃꯤꯅꯤꯁꯤꯗ꯫
8: ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯌꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯔꯁꯟꯁ ꯋꯤꯠ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯂꯦꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯌꯥꯎꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤꯞ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔꯁ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯇꯥꯇꯥ ꯑꯦ ꯑꯥꯏ ꯖꯤꯒ सबसे दूर सबसे पहले हाइब वाखलोंदा तमेंगलोंग जिला की बंगाईजांग सेंगदाई कहुलोंग अमसुंग संग्रुंग पांगदा लेरीबा खुंजासिंगदा हक्सेल की याउना तोंगान तोंगान बा सरकार की याइपा थोरांग सिंग निंगथीनु फंगना बगे मतांगदा जनजातिया गरिमा उत्सव लिसिंगनी कुंतलु के थोरम ngasi पांथोख्रै थोरम की मनुंग सन्ना लेमने हेल्थ चेकअप तौबा हिदाक लांगथक सिंग यांथोकने सिंगबा तोंगान तोंगान बा थोरम सिंग पांथोखी डिपार्टमेंट तरानी थोइना तोंगान तोंगान बा स्टोल केया हांगदोक्तुना सरकार की कानबा सिंग खुंजासिंगदा फंगना बा होनखी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेनापति ने सिंधुना जन भागीदारी की मखाद इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन ngasi पाउमता की एसडीओ ऑफिस पांथोखी थोरमतुद पीएम किसान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यौना तोान तोानब सरकार की स्कीम सिंगे मतांगदा मरी लेने विभाग सिंगे मिहुर सिंगना खुंजा सिंगदा निंथीना खंगनबगी थोरम सिंग पांथोखी ट्राइबल मियाम की सगो थोरांगी स्कीम पीएम जनमनमसुं धरती आवाज जनजातिया ग्राम उत्कर्ष अभियान दासगुआ की मतांग मियाम निंथीने खंगनबगी थोरमा सोरासानपुर जिला की साइकोर सब डिविजन की मनुसन लेबा लाबोम कम्युनिटी हॉल माता कम्युनिटी हॉल ngasi पांथोख्रे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोरासानपुर ने सिंधु पांथोखी थोरम तोान तोानब थबक थोरम सिंह आधार एनरोलमेंट तब रेशन कार्ड यंथोप डोमिसाइल सर्टिफिकेट पीब किसान क्रेडिट कार्ड खुशीनब जनधन अकाउंट हांगदोप इंसुरेंस यौनबी तोान तोानब थोरम क्या पांथोखी थोरम की सरुक लेमने हेल्थ चेकअप तब हिदाक लांथक यंथोपमी लेम उ चरा कयासु यंथोखी पाव की मरक थन अटेंब ब्रेक अमु
7: लौमी इचुलेनाउ सिंगी नुंगाइरब पाउ आइखुइगि लमदमसिगि मियामना ख्वाइदेगि पामनारब फौदि जोराबर फंगबिरागनी चाक हाउबा चाक थोतबा चाक मनम चेंदबा इंगसु चाबयाबा चेंग अरिबसु चाबयाबा पोथोक यामना लेबा हाइब्रिड जोराबर चही अहुम चुपना चांगिंग तौरबा नुमि चाम कुन्नी सांगबा फौदिनी ngasimak phangbiragani जोराबर मनाकनकपा रिटेलर सिंगदा
8: आकाशवाणी फालदगि पाउ ताबिरी केंद्र की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैरी नीट यूजी की अमुक हन हयंग पांथोकतोरीब परीक्षा से करीगुंब फिवम अमतदा असोय अंगाम थोंदना बहोनगनी नई दिल्ली दिगसि पांथोकीब सेंट्रल सिक्योरिटी अमसुंग इंटेलिजेंस एजेंसी सिंगे अवांग बथा के मिफम दो वाफम अजे फोंदोलदुना शिक्षा मंत्री नहाय तोंगान तोंगान ब कंपिटिटिव परीक्षा सिंगे अमसुंग मसिग मानब परीक्षा सिंगे मरी लेना लान पाउ संदोकप ऑनलाइन ग्रुप कया लैब थेंदरे असिगुम मखल की नेटवर्क निथीना मस खोक्तना चेनब थिजिब लान पाव संदोलीब मतक अकन थब लौखप की तंगाइफद सानब की पाव खेत्री मयूम प्रेम चांदगी
12: ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की मीटिंग मखाद आई लीग थर्ड डिविजन कुंतरुक की फाइनल राउंड की सैनिक मैच सनराइज क्लब उड़ीसा सेगाउन एफ सी असाम पांजल तरह माइथि पीखे अतब मैच क्लासा एफ सी कैनौमी ट्राउ एफ सी कॉकेटल ड्रो ओखे एफ सी रेंगदाई नोनेना भगपत एफ सी उत्तर प्रदेश को पांजल अहम माइथि पीखे बबीना ग्रुप मैच स्पोन्सर तब हुमारक सूब सर चुचान सिंह के सी एस आई सी बी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट कुन्मा कुतरुकी सैनिक मैच एथलेटिक ब्रदर्स एसोसिएशन राही एफ सी पांजल चलना ड्रो ओखे एन एम एफ ए नम्फा मैं इम्फा यूनाइटेड एफ सी को पांजल माइथि पीखे त्रातुक सूब अम्फा सेनियर्स वुमेन्स फुटबॉल लीग लिंगतरुक कुंतरेट मैच यूथ वेलफेयर क्लब थम्बाल खोंना कांगसुप रोड यूथ फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन क्रिप्सा पांजल माइथि पीखे एफ सी इम्फाल मणिपुर यूनाइटेड एफ ए बु पांजल तरह माइथि पीखे मंगासु एमएनसीए बॉयज अंडर 14 वन ट्रॉफी लिंगमा कुंतरुक की प्री क्वार्टर फाइनल मैच पी टी आर सी पासोना ट्राउ क्वाकेटल विकेट मंगा माइथि पीखे वाई ए एल थोबाल थ्रेम फोर्स खेटिगाउ रन मौरा माइथि पीखे ए एम सी ए थोबाल एस एस सी पोरम पाटू रन चामगाफुतरुक माइथि पीखे ए के एस डी ओ खांगबोना वाई यू सी सी क्वाकेटल मोरंगपुर विकेट निपान माइथि पीखे क्वार्टर फाइनल मैच था कुछ सानगने अमरों मंगा सूब एम एन सी वुमेन सेनियर वन डे ट्रॉफी लिंगमा कुंतरुक की सनक मैच फोर्स खेटिगाउना अल अमिन निलोंगमु रन चामगाफुतरुक माइथि पीखे सेदो थमुना टी सी एम डी सी थोंजुबु रन चनी निफुद माइथि पीखी दिजमने
8: अरोबद मरब पाव मुख्यमंत्री यूनाम खेमसान हैरी सरकार की पांदम दी आयन की वाम द पारी बखुज खुलाई सिंह लोकत पनी लगा फुरुप की मियो तरुक फाजन की बादू अथोब मतम थातोरक नबा तोंगान तोंगान बम बफम सिंह दा पाक सन वाकर खोंग जंग संग संग खरे मणिपुर की पेट्रोल पंप सिंह दा थाउ पीबी की अकंग नबा सन कांगलोन चन बहुरे थाउ की अवाट पलिती हाइना मणिपुर पेट्रोलियम डीलर्स फ्रेटर्निटी की माइकई दगी फोंदोरगली केंद्र की सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय की मखाद लेबाग अब पर्सन विथ डिजेबिलिटीज की आगाम लेमना एक्सीडेंट इंसुरेंस पॉलिसी यौनगदौरी केंद्र की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैरी नीट यू जी की अमुक हन हयें पांथोकदौरी परीक्षा से करीगुम फिवम असोय आगाम थोनब होनगनी पाउ लोजरे
0: अदोम थौरम ताबिरिबसी आकाशवाणी इम्फाल दगिने हौसिक अमुक लांथोकचरी तोंगान तोंगान व फिल्म दगि लोखत्जब इसै सिंह खुदोल गि अहान बदलै जरे सैना फिल्म दगि कोंग्राइ लाटपम दिनेश शर्मा अमदि हुइदोम पुष्परानी अनिपुन सखमनेबै इसै सैरेंगबा आर के लालमणि सैरांगबा ओकेन अमाकचम

मतमिसै कुदुलगी अहुमसुबद मुक्तविरसे खेत्री मयुम विशेषोरी देवी नसकपैसे सैरिंग बी एम मैश्नाम्बा सुमन सेहोरी लमदम सिगी नुंशी वारीनी।

भाई बिल्कुल, चेहरा हम भी नहीं देख सकते, लेकिन गीतों से बढ़िया और क्या ही माध्यम हो सकता है दिल में उतरने का, आप भी मानते हैं ना? जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हर श्रृंगार और मैं हूँ आपके साथ रितिका, और आकाशवाणी दिल्ली के FM कोल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये गीत आपने सुना फिल्म सलामी का, कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज में, नदीम श्रवण का संगीत और समीर का लिखा ये गीत। कहते हैं ना दोस्तों कि जब प्यार हो जाता है ना तो फिर दूरियां भी भाई सहन नहीं होती है, हर पल बस उसी इंसान की याद आती रहती है और मन होता है कि बस एक एक पल उसके साथ बिताने को मिल जाए। जो अगला गीत है ना वो बस उन्हीं दिलों के लिए है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार

भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हर श्रृंगार मेरे यानी रितिका के साथ। और कहते हैं ना दोस्तों कि प्यार बहुत ही अजीब होता है। कभी एक मुस्कुराहट से शुरू होता है और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब दिल सिर्फ इतना कहता है कि मोहब्बत अगर किसी को कहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो।

तो दोस्तों, हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। 11:10 पर गीत मेरे मनमीत में होगी आपसे फिर से मुलाकात, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defence, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said, both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dong-gyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है, जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
2: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has congratulated Prime Minister Narendra Modi for being honoured with the Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Goyal said, "This is an acknowledgement of the immense contributions of India's farmers, fisherfolk, scientists and other workers in the agriculture sector." Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has also expressed happiness over the conferment of FAO's honour to Prime Minister Modi. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Nabanna during a handover ceremony to the Border Security Force for border fencing. He said infiltrators identified in the state would now be directly handed over to the BSF for further action and coordination with the Border Guards Bangladesh. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the seven communities protected under the CAA, provided they had entered India before 31st of December 2024. India is said to remain the world's fastest growing major economy as the United Nations in its report projected a growth rate of 6.4% this year for the country despite global uncertainty caused by the West Asia conflict. UN senior economist Ingo Pitele, briefing reporters on the mid-year update to the World Economic Situation and Prospects report yesterday, said India's strong consumer demand, public investment and growth in services exports continue to support its economy. Cyprus President Nikos Christodoulides, along with a high-level delegation, arrived in Mumbai this evening for a three-day official visit to the country. He was warmly received at the airport by Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma and Chief Minister Devendra Fadnavis. The swearing-in ceremony of the newly elected members of the 16th Puducherry Legislative Assembly was held today at the Assembly Hall. Pro Tem Speaker A. Anbalagan administered the oath to the newly elected members of the Legislative Assembly. In IPL cricket, Mumbai Indians have set a target of 148 runs for Kolkata Knight Riders at the Eden Gardens in Kolkata tonight. In reply, KKR were 51 for 2 in 6 overs when reports last came in. Put into bat, Mumbai Indians posted 147 runs for the loss of 8 wickets in the allotted 20 overs. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and opted to bowl. Tomorrow, Gujarat Titans and Chennai Super Kings will clash at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad at 7:30 p.m. local time. And that is the end of this news bulletin. We'll be right back.

राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर फिल्माया ये गीत आपने सुना 1976 में आई फिल्म महबूबा से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज, आर डी बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मनमीत और मैं हूं आपके साथ रितिका।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत, पर आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने

0: पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोदुलिदिस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मुंबई पहुंचे। मुंबई हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शुक्रवार को बैठक होगी। दोनों नेता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 147 रन बनाए थे। 148 रन के लक्ष्य के जवाब में ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 ओवर में 5 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news shared by Aparajita Nair. India and Italy have finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome yesterday. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas, including critical minerals, defence, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties.
0: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
2: Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Chu Dongyu. Union Home Minister Amit Shah has congratulated Prime Minister Narendra Modi for being honoured with Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Shah said, "This honour is a tribute to millions of Indian farmers and all those associated with the agricultural sector." Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal and Union Finance Minister Nirmala Sitharaman

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन सकते हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और लेकर आई हूं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। खामोश निगाहों से जब तुम बात करते हो तो ये फुर्सत के हर पल में बस तुम्हारी याद दिलाते हैं।

वो अपनी नशीली निगाहों से जब हमें देखते हैं, हम घबरा कर आंखें झुका लेते हैं। कौन मिलाए उनकी निगाहों से निगाहें? सुना है वो आंखों से ही अपना बना लेते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के

नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और कार्यक्रम है निशिगंधा। मैं हूं आपके साथ अंजू।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं।

तुमसे बिछड़कर तुमसे मिलना कुछ ये एहसास दिलाता है मुझे कि कुछ याद आता है मुझे कि यूं ही किसी रोज मैंने तुम्हारे शहर में गुजारे, यूं ही कुछ रोज मैंने तुम्हारे शहर में गुजारे और देखकर चाय की टपरी मुझे याद आया तुम्हारी और मैंने रुककर कहा एक कप चाय और पीछे से आवाज आई अरे एक नहीं दो।

उठते हैं जब कदम तेरे, तो ये बहारें भी शर्मा जाती हैं। उठते हैं जब कदम तेरे, तो ये बहारें भी शर्मा जाती हैं। सामने जो आती है तू, तो चांद की चमक भी फेंकी पड़ जाती है।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और

0: से जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आयोग के संचालन के लिए 5 सदस्यीय पैनल को मंजूरी दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए उचित कानूनी ढांचे का अध्ययन मूल्यांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। अमरीकी सेना ने कहा कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच की। इस जहाज पर अमरीकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई और उसका मार्ग बदल दिया गया। ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरानी जहाज पर नाकेबंदी शुरू किए जाने के बाद ये लगभग 5वां पोत है जिस पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish Abraham. India and Italy have finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between PM Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome yesterday. The outcomes marked the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, PM Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: Later in the day, PM Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization, FAO, at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Q. Dongyu. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Nabanna yesterday during a land handover ceremony to the Border Security Force for border fencing. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the 7 communities protected under the CAA, provided they had entered India before 31st of December 2024. Cyprus President Nikos Christodoulides arrived in Mumbai last evening on a 3-day official visit to India, accompanied by a high-level delegation. He was received at the airport by Jishnu Dev Verma and Devendra Fadnavis. The delegation will travel to Delhi today. The Cyprus president is scheduled to meet Narendra Modi tomorrow for talks on further strengthening bilateral cooperation in various sectors. Indian Navy has marked the successful culmination of the landmark IOS Sagar deployment with the flagging of INS Sunanya at Kochi. The deployment involved an extensive multinational mission across the Indian Ocean region. The Defense Ministry yesterday said the joint mission, involving 38 personnel from 16 partner nations, showcased India's emergence as a preferred security partner in the region. Uttar Pradesh government has announced the appointment of the chairman and members of the newly constituted Uttar Pradesh State Rural Local Bodies Dedicated Backward Classes Commission. Issued by the Panchayati Raj Department, the notification marks a key step towards ensuring representation of backward classes in the state's rural local self-governing bodies. The commission has been formed to study and evaluate the legal framework for reservation of other backward classes in the three-tier Panchayati Raj institutions across the state. World Health Organization has said it could take up to 9 months for a vaccine against this particular strain of Ebola to be ready. WHO advisor Dr. Vasi Murthy said two candidate vaccines against the Bundibugyo strain are currently under deployment, but neither has yet undergone clinical trials. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said there have been around 600 suspected Ebola cases and 139 suspected deaths so far. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders defeated Mumbai Indians by 4 wickets at the Eden Gardens in Kolkata. Put into bat first, Mumbai Indians posted 147 runs for 8 in 20 overs. In reply, Kolkata overhauled the target for 6 in 18.5 overs. Today, Gujarat Titans will face Chennai Super Kings in Ahmedabad at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों, समय हुआ 1:11 और 9 सेकेंड। ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और आप सुनेंगे बहुत ही मधुर गीत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

कहानी शुरू हुई थी एक छोटी सी मुलाकात से, अब बात आगे बढ़ गई है दिन रात की हर एक बात से। तुम्हारी हर एक मुस्कान पर दिल हार बैठे हैं हम अब, और कोई ख्वाहिश नहीं इस हसीन शुरुआत के बाद।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

शायद तुम्हें मालूम नहीं कि खूबसूरती की इंतहा हो तुम, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि खूबसूरती की इंतहा हो तुम, पर मुझे तो लगता है ये कोई दुआ है जो कबूल हो गई है।

मैंने उससे पूछा, क्या मुझ पर एतबार है? तो उसने कहा, तेरी हर एक बात पर बहुत एतबार है। मैंने पूछा, अच्छा इसकी वजह? तो उसने कहा, वजह बस इतनी सी है कि तुमसे बहुत प्यार है।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

दोस्तों, गीत सुहाने सुन रहे हैं आप अंजू के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुना है तुम हर चीज का हिसाब रखते हो, फिर बताओ कि मेरी मोहब्बत का क्या हिसाब दोगे।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 2:10 पर रात सुर में लेकर एक बार फिर से रहूंगे आपके साथ सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, मछली पालकों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य के योगदान की पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आयोग

0: आयोग के संचालन के लिए 5 सदस्यीय पैनल को मंजूरी दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए उचित कानूनी ढांचे का अध्ययन और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। अमेरिका की सेना ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच की। इस जहाज पर अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई और उसका मार्ग बदल दिया गया। ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरानी जहाज पर नाकेबंदी शुरू किए जाने के बाद ये लगभग 5वां पोत है जिस पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 19वें ओवर में जीत हासिल कर ली। मनीष पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish Abraham. India and Italy have finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between PM Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome yesterday. The outcomes marked the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, PM Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties.
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: Later in the day, PM Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agricultural Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Q. Dongyu. Union Home Minister Amit Shah has congratulated PM Modi for being honored with Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Shah said, "This honor is a tribute to millions of Indian farmers and all those associated with the agricultural sector." Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal and Union Finance Minister Nirmala Sitharaman have congratulated PM Modi over the conferment of FAO's honour. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari has announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Nabarna yesterday during a land handover ceremony to the Border Security Force for border fencing. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the 7 communities protected under the CAA, provided they had entered India before 31st of December 2024. India is set to remain the world's fastest growing major economy as the United Nations in its report projected a growth rate of 6.4% this year for the country despite global uncertainty caused by the West Asia conflict. UN senior economist Ingo Peterle briefing reporters on the media update to the World Economic Situation and Prospects report said India's strong consumer demand, public investment and growth in services exports continue to support its economy. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has said that nuclear energy will become indispensable for ensuring a carbon-free industrial-scale baseload power supply and that the state is fully prepared to lead the sector's transformation. Addressing a delegation from the Nuclear Energy Institute and the U.S.-India Strategic Partnership Forum during the U.S. Nuclear Executive Mission to India, he said long-term industrial growth cannot rely solely on solar and wind energy. Mr. Fadnavis noted that emerging sectors such as artificial intelligence, data centers, semiconductors, green hydrogen, electric mobility, and the wider digital economy will require stable and continuous power, making nuclear energy an economic necessity. He also highlighted that Maharashtra's economy, valued at around $660 billion, is supported by strong industrial infrastructure, world-class ports, advanced logistics, a skilled workforce, and industry-friendly policies. India Meteorological Department has issued a red alert for severe heat wave conditions over parts of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh for the next 2 to 3 days. Similar conditions are likely to prevail over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand till today. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders defeated Mumbai Indians by 4 wickets at the Eden Gardens in Kolkata. Today, Gujarat Titans will face Chennai Super Kings in Ahmedabad at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

समय हुआ है 2:11 और 2 सेकंड और ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं एक बार फिर से अंजू करती हूँ आपको बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जख्म दिल अभी भी वैसे का वैसा ही है, जख्म दिल अभी भी वैसे का वैसा ही है। और तेरे बिना जीना, जीना भी कोई जीना सा है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

अब लौट के मत आना, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं। अब लौट के मत आना, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं। वो रास्ता ही छोड़ दिया जहां तेरी कोई गली आती नहीं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक, हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

खत अधूरे थे मगर वो चिट्ठियां अच्छी लगी, कागज उससे सही नजदीकियां अच्छी लगी। रात भी खामोश थी और चांद भी गमगीन था, आंख में डोरे लिए वो सुर्खियां अच्छी लगी। जिक्र में भी नाम उनका हम ना ले पाए कभी, प्यार में इन बंदिशों की चुप्पियां अच्छी लगी।

हम तो बुत बन गए तेरे इंतजार में, हम तो बुत बन गए तेरे इंतजार में, एक तुम आए भी नहीं और मेरी जान भी ले गए।

0: दोस्तों तो अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर पंकज गोस्वामी रहेंगे आपके साथ कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार, शुभरात्रि।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास केंद्र पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला लिया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज पुनः मतदान होगा। दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा है। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोल्ला को मैदान में उतारा है, जबकि CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आयोग के संचालन के लिए 5

0: सदस्यीय पैनल को मंजूरी दी है। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच की। इस जहाज पर अमरीकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई और उसका मार्ग बदल दिया गया। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर अब शुरू होता है कार्यक्रम हमराही। मैं हूं पंकज आपके साथ और आधी रात के 3:11 हो चुके हैं, तो इस शो की शुरुआत करते हैं और फिर दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूं, लेकिन अभी के लिए बरसात की एक रात मूवी से इस गाने से ही इस शो को शुरू करते हैं और लता जी और किशोर कुमार की आवाज में। तो अभी इन गानों का मजा लीजिए, दो गानों के बाद आपसे मिलता हूँ।

इन फिल्मों का दौर बेशक बीत गया हो, लेकिन पुराने गानों का यह दौर कभी नहीं बीतेगा, क्योंकि इन गानों ने मानव अमृत पी लिया हो। आधी रात की इस खामोशी में मैं आपका साथ देने के लिए मैं पंकज हूं आपके साथ, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर शो है हमराही, और जिसमें पूरे घंटे मैं प्ले करूंगा पुराने डुएट्स गाने आपके लिए। वैसे बड़े दिनों बाद में आपसे मिल रहा हूं, और सच में बहुत मिस किया मैंने आपको और इन गानों को, सच्ची। तो तसल्ली से इन हसीन गीतों का मजा लीजिए, और मैं इन दो गानों के बाद आपसे दोबारा मिलता हूं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

देवता मूवी का एक गाना था, लता जी और किशोर कुमार की आवाज थी, आर डी बर्मन का म्यूजिक और गुलजार के बोल। वैसे अगर चांद की चोरी इतनी आसान होती तो हर कोई उसे अपने पसंदीदा मर्द या महबूबा को दे देता लेकिन खैर, वैसे अपनी लवी डवी के चेहरे को चांद से कंपेयर करके ना उसे खुश तो किया ही जा सकता है, इतना तो लोग करते ही है। वैसे मैं हूं पंकज, आपके साथ हमराही शो में सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, और हमेशा उसे ही अपना हमराही बनाइए जिसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हो। यकीन मानिए आज के टाइम में प्यार मिलना सच में बहुत मुश्किल बात है, और अगर मिल जाए तो फिर आपसे ज्यादा लकी कोई नहीं।

बुलंदी मूवी से ये गाना था मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के लिरिक्स थे और आर डी बर्मन का म्यूजिक था। वैसे एक हेल्दी रिश्ते की पहचान पता ये भी है कि उसमें थोड़ी बहुत तू तू मैं भी हो, और अगर ये नहीं है ना तो सच मानी रिश्ता ठंडा है। बाकी मौसम तो गर्म है, इस टाइम भी आधी रात हो रही है और अभी भी गर्मी तो है ही अब क्योंकि मई की ये रात है। बाकी अगले घंटे मैं पंकज आपसे फिर मिलता हूँ दूसरे शो अरुणिमा में। तो इसी तरह गाने एंजॉय करते रहिए हमरा ही शो के, ये जो दो गाने और बचे हुए हैं, और उसके बाद अगले घंटे में आपसे मिलूंगा सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। आंखें बंद कीजिए, इस गाने में खो जाइए। लेकिन अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं, सो प्लीज ध्यान से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया है। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज पुनः मतदान होगा। दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार तिबांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रज्जाक मोल्ला को मैदान में उतारा है, जबकि सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। अमरीका और ईरान के बीच तनाव के बीच अमरीकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर को रोककर उसका मार्ग बदल दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई। इस पर ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का संदेह था। अमरीका ने इस साल अप्रैल में ईरानी जहाजों पर नाकाबंदी लागू की थी। इसके बाद से अब तक 91 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदला जा चुका है, जबकि 4 जहाजों को रोका गया है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 19वें ओवर में जीत हासिल कर ली। इसके साथ ही

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। सुबह के 4:10 हुए हैं और अब शुरू होता है अगला कार्यक्रम अरुणिमा, और मैं हूं पंकज आपके साथ। और इन दो गानों के बाद आपसे मैं मिलता हूं। अभी के लिए चोर पुलिस मूवी से ये गाना सुनिए लता जी की आवाज में।

रविंद्र जैन के बोल हो और उन्हीं का ही संगीत हो और गाना अच्छा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुरेश वाडकर और हेमलता की आवाज थी। पहली फिल्म का ये गाना सुना आपने अरुणिमा शो में, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मेरे यानी पंकज के साथ। सुबह के 4:18 और 37 सेकंड हुए हैं और स्टूडियो से एकदम लाइव जुड़ा हुआ हूँ मैं आपसे। तो इन दो गाने के बाद मैं आपसे फिर से मिलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बस ये कहूंगा कि जिंदगी में ना कुछ कामों को पूरा होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो सब्र करना जरूरी है ताकि काम अच्छा हो।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ये गाना इस तरह से बना हुआ है कि चाहे तो इसे ढलते हुए दिन के समय सुनो तो भी अच्छा लगेगा, और उगते हुए सूरज के टाइम पर सुनो यानी इस टाइम तो भी अच्छा ही लगेगा। कुछ गानों की फितरत ही बहुत खूबसूरत होती है। सलील चौधरी ने इस गाने को म्यूजिक दिया था, योगेश ने लिखा, मुकेश ने गाया और आनंद फिल्म का ये गाना था। इस जिंदगी की पता है कुछ घटनाओं को हम बहुत ज्यादा अपने ऊपर इतना सीरियसली हावी कर लेते हैं और कि अपने प्रेजेंट टाइम को भी हम जो है खराब कर लेते हैं। हालांकि गलत बात है, और एक बात ध्यान रखनी है हम सभी को, लाइफ की नहीं कि एक्सपायरी डेट फिक्स है, जाना तो पड़ेगा लेकिन कब ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार तो टाइम से पहले ही कई लोग चले जाते हैं। तो जाना तो मतलब है ही, लेकिन साथ कुछ जाना नहीं है तो फिर इसे जो है अच्छे से जीना चाहिए, और कभी भी किसी की दूसरों की जिंदगी में जो है हमें खराब नहीं करना चाहिए, और यही इंसानियत है। अरुणिमा शो में मैं हूं पंकज आपके साथ, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। हम दूसरों को कांटे नहीं बल्कि फूल दें।

अपने पॉजिटिव वर्ड से किसी को उत्साह से भर देना भी जो है वो भी बहुत बड़ी बात है। और ऐसा ही ये एक गाना था अंधा कानून मूवी का, किशोरदा की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। हंसना रोना जीवन के सिक्के के देखिए दो पहलुओं की तरह है और यही हमारी जिंदगी को जो है ना बैलेंस भी रखता है, लेकिन शर्त बस इतनी है कि ये दोनों इमोशंस जो है हमारे ऊपर भारी ना पड़ जाए। इसका ध्यान तो देखिए हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम इतना एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर अपने माइंड के ऊपर ले लेते हैं कि फिर उसके बाद जो है शरीर में धीरे धीरे रोग पैदा होने लगते हैं, कभी सिर दर्द होने लगता है, कभी कुछ चिड़चिड़ाहट आ जाती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़ा सा साइड करना चाहिए ताकि आप जिंदगी के जो इम्पोर्टेंट पल हैं उनको ऐसे वेस्ट ना कर पाएं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज आपके साथ और शो का नाम है अरुणिमा। अब बाकी तो खैर और कुछ अनलिमिटेड तो नहीं लेने चाहिए दुख, लेकिन हाँ एक चीज है कि आप गाने पूरे अनलिमिटेड एंजॉय कर सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। अभी के लिए जगजीत जी की आवाज में ये गाना।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

खुशी के मारे पांव जमीन पे ना पड़े वो अलग बात है, लेकिन गर्मियों में तो पांव जमीन पर ही रहते हैं क्योंकि जमीन इतनी गर्म होती है और ठंडक तो कहीं होती नहीं है, तो इसलिए जमीन पर ही रखने पड़ते हैं। लता जी की आवाज इस टाइम सुनना यानी सोने पर सुहागा, और अब जो है थोड़ी देर में सूरज की सोने जैसी रंगत जो है वो आसमान में छा जाएगी क्योंकि सुबह के 4:54 हो चुके हैं और मई का महीना चल रहा है, जल्दी अब दिन निकल आता है। अरुणमय शो का टाइम जो है बस कुछ मिनटों में पूरा होने वाला है और मैं पंकज आपसे अगले घंटे मिलूंगा यानी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। तो ये गाना इस शो का लास्ट है, तो आप इस गाने को एंजॉय करिए और अगले घंटे दूसरे शो

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया है। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज पुनः मतदान होगा। दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देबांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोल्ला को मैदान में उतारा है, जबकि CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर को रोककर उसका मार्ग बदल दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार MT सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई। इस पर ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का संदेह था। अमेरिका ने इस साल अप्रैल में ईरानी जहाजों पर नाकाबंदी लागू की थी। अमेरिका का कहना है कि इस नाकाबंदी से ईरान को रोज करीब 50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering, and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome, Prime Minister Modi said that Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is of a powerhouse of scale, talent, and affordable innovation. Mr. Modi highlighted that both countries will work together on shipping, ports modernization, logistics, and the blue economy. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also said that both nations are working hard on advanced manufacturing, infrastructure, energy, space, economy, and defense. India and Italy will celebrate 2027 as the year of culture and tourism. To promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said the initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries. She said stronger ties between countries are measured not only through political and economic relations, but also through connections between people and societies. Prime Minister Narendra Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome, Italy. Receiving the award, Mr. Modi dedicated the honor to India's millions of farmers, livestock rearers, fish farmers, agricultural scientists, and workers. The medal was presented by FAO Director General Qiu Dongyu. Several union ministers, including Home Minister Amit Shah, Finance Minister Nirmala Sitharaman, and Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, have congratulated PM Modi for being honored with the Agricola Medal. Home Minister Amit Shah noted that India has emerged as a global leader in the agricultural sector, and the country's agricultural model is setting a benchmark for the whole world. In West Bengal, re-poll will be held in the Falta Assembly constituency in South 24 Perganas district today. Voting will start at 7 a.m. and conclude at 6 p.m. A total of six candidates are in the fray, including two independents. Trinamool Congress candidate Jahangir Khan has announced that he would not contest the election. However, his name remains on the ballot formally as the deadline for withdrawal of candidature has already passed. The BJP's candidate is Debangshu Panda. The Congress has fielded Abdul Razak Mola, while the CPIM has fielded Sambhunath Kurmi. Our correspondent reports the Election Commission has made all preparations to ensure peaceful voting. Webcasting facilities are available in all 285 polling stations. The total number of electors in the Falta Assembly constituency stands at more than 2,36,000. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders defeated Mumbai Indians by 4 wickets at their home ground, Eden Gardens, last night to keep playoff hopes alive. In today's fixture, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. The match will begin at 7:30 p.m. The India Meteorological Department has issued a red alert for heat wave to severe heat wave conditions over parts of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. Similar conditions are likely to prevail over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand today. The weather agency has also predicted hot and humid weather conditions over Gangetic West Bengal, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.

सुबह हो चुकी है, 5:10 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। और अब शुरू होता है कार्यक्रम भोर सुहानी, मेरे यानी पंकज के साथ। इन दो गानों के बाद आपसे मिलता हूँ।

इस टाइम कितनी जल्दी उजाला हो जाता है ना. अब खैर गर्मियों में तो बहुत जल्दी दिन निकल आता है, दिन बड़े हो जाते हैं और रातें तो छोटी हो ही जाती हैं. खैर अभी आपने एक गाना सुना किशोरदा और आशा जी और अमित कुमार की आवाज में, कस्मे वादे मूवी से. इस गाने को लिखा था गुलशन बावरा ने और आर डी बर्मन का म्यूजिक था. 21 मई की एक गर्म सुबह है और भोर सुहानी शो में मैं पंकज हूँ आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर. और मई में जो है गर्मी धीरे धीरे और तेज होगी और जून जुलाई की गर्मी की तो खैर बात ही मैं क्या बोलूँ. इसलिए आप एक काम करिएगा, मतलब मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ कि जितने भी बाहर के इंपॉर्टेंट काम होते हैं अगर वो हो सकें तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी हो सके उन कामों को फटाफट खत्म कर लेना चाहिए और दोपहर को ऑफिस या घर के जो काम होते हैं अंदर के जो काम होते हैं उनको कर लेना चाहिए, वही समझदारी होती है. तो खैर इन दो ठंडे ठंडे गानों के बाद मैं आपसे फिर मिलता हूँ. ये गाने ना एक्चुअली बिल्कुल ठंडी वाली फीलिंग देते हैं. सुंदर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, मैं पंकज, शो का नाम भोर सुहानी.